0: ये यम गांगा
1: नहीं को ऑयल चला उगांगा
0: किता ते याम
1: और चला यंग नहीं को
0: के या कि हम ननो नन सर्विसेज पीपीए
1: हैं आया रे इबुके नि किता रे नंग कांगा न तोर बिया के ननो आ देई ता के नको मार्केटिंग एट ppa.org.ky
0: के मैसेज न को नन फेसबुक पेज पीपीए ए ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिकेशंस अथॉरिटी के पीपीए मेरी एफएम 89.9 के कुबोनी को नन बंदे ता के नको रेंते तारे फोन नंबर ए ओनो व तेनुआ आकिया तो वाना नि मेवा आकिया के नि पुन रोगो नन अकाउंट पीपीए पाइरी कि नि करी न तंग तंग इम के एम कांगा आ ने नन सचेस्टेड बॉक्स पीपीए अरे एकता रोया इपुकिन
1: वेबमैन.